0: सच कहे जया हुंदा।
1: चुल्ले ते पकदी रोटी सच है,
2: मिट्टी चुगदी फसल सच है,
1: गुरु दी बाणी सच है, सतगुर प्यारे सच्चे दी बाह फड़दे हुंदे ने।

ब्यूटी इंडस्ट्री दी दुनिया विच अपना करियर बनाउन बारे सोच रहे हो ता हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तुहाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही राह जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वी जाने जाते हन। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड, यूनिट 2, ब्रैम्पटन, ओंटारियो। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छूमंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको थां ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगु शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे लिए तुहाडे लिए है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे, डाइन इन, टेक आउट, केटरिंग, लंच ते डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स ते स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो कि तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते। एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन।

0: jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे
4: S&S Lawyers को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई आज ही S&S Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000
5: ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਚੱਲ

0: ट्रक सेल वालियां कोल जा, 12 महीने कम पाओ ते नाले चंगे डॉलर कमाओ।
1: कवालटी लॉजिस्टिक इंक, जिन्हां नूं पाल है काबिल ते ईमानदार ट्रक ड्राइवर्स, ट्राला ड्राइवर्स ते ओनर ऑपरेटर्स दी। वधेरे जानकारी लई कवालटी लॉजिस्टिक इंक दे जसवीर होरां नूं कॉल करो
0: 416-717-2929
1: 416-717-2929 कवालटी लॉजिस्टिक इंक, 14 स्टेनवे बुलेवर्ड यूनिट 4 इटोबिको।
2: कैनेडा विच प्योर पंजाबी खानिया अते स्वीट्स लई मशहूर प्योर पंजाबी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट,
1: डाइनिंग टेकआउट केटरिंग, लाइव ट्रक ले आके थोड़ी कार केटरिंग दी सर्विसेज दिंदे ने,
2: वेज नॉन वेज केटरिंग, ताजिया स्वादलिया मिठाइयां ते जायकेदार खाने लई इको एक नाम प्योर पंजाबी। सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देण ते पाओ 10% डिस्काउंट।
1: आज ही विजिट करो 4025 ब्रेंडन गेट ड्राइव मिसिसागा, प्योर पंजाबी, 647-338-9172। कॉल करो गुरजीत रंधावा नु 6473389172।
3: ओहो, सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
4: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब ना गल ते करदे आ मसले दा हल।
3: एसी फर्नेस, गैस लाइन, वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन, नव एयर कंफर्ट ते जतिंदर संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
4: 647-706-6640।
5: ओए ट्रक काला लिया, जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां, की करां
6: मैं? सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप, PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
7: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवर्ड मिसिसागा, मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन।
8: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवे स्टाइल दियां मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है। इन्ना ही नहीं, 4-व्हीलर्स अते 18-व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है। जे तुसीं ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो,
6: कॉल करो जे एंड गैरी नूं
8: 905-459-5533
6: 905-459-5533
8: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।

0: लग्जरी सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
0: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

बच्चे टेक्स्ट मैसेज 416-518-3200 416-518-3200। एम के पैलेट्स नूं तुसी सपोर्ट करना सारे ने, ये तुहाडे अपने इत्थों दे बॉर्न जवाका की कंपनी है, तो इन्होंने ये काम शुरू किया बड़े वधिया लैवल ते लै गए फार्म हाउस तो स्टार्ट करके। ये ISPM 15 सर्टिफाइड स्किड्स ने यह जिहड़ियां दुनिया भर च एक्सपोर्ट की जा सकदियां। एम के जो एम के पैलेट्स 365-866-BSE 365-866-BSE। मनदीप थिंद मैनू लिखते हैं कीप द सेम टॉपिक वेरी इनफॉर्मेटिव। मनदीप कौर, मनदीप थैंक यू सो मच थोड़े टैक्स मैसेज के लिए। और मैं स्पेशली ये जानना चाहना कि मेरे घर जिहड़ियां औरतां ने चीज़ां नूं सुणदियां पईआं ने अज दी डेट च, यानी कि मेरे फैमिली साडा जिहड़ा परिवार आ वड्डा, उहदे च काफ़ी सारिया लेडीज़ ने जिहड़ियां इन्हां टॉपिक्स नाल जुड़ियां ने, तुसीं भी जरूर जुड़ो सारिआं नूं। मैं बेनती करूँगा, स्पैशली लेडीज़ नूं कहूँगा, तां जो थोनों पता होवे जदों तुसीं वोट करदे हो तुसीं वोट किहनूं करनी है। तुसीं अपने हसबैंड दे कहे ते वोट ना करो, तुसीं अपने मन नाल भी सोच के वोट करो कि मैनूं वोट किहनूं करना चाहिए। यू आर ह्यूमन बीइंग, तुसीं इस दुनिया ते आए हो, तुहाडे कोल भी बराबर दे अधिकार ने, ते तुसीं वोट करन लग्या अपना फैसला खुद लै सको। वोट माड़े होण दे कारण तुहाडे शहरां दे सियासतदान, तुहाडे स्टेट दे सियासतदान, तुहाडे मुल्क दे सियासतदान उहो जिहे आ रहे ने जिहे जिहे चुणे जा रहे ने। ते नाल नाल तुसीं नंबर नोट करो पंजाब इंश्योरेंस दे शेर जंग सिंह राणा होणा दा। तुसीं राणा जी नूं जिहड़ा कॉन्टैक्ट करोगे 416-910-9000 RDSP शेर जंग सिंह राणा कहिंदे ने किसी भी घर च कोई भी व्यक्ति जिहनूं लाइफ टाइम मैडिसन लग गई, 49 साल तो घट उम्र है तुहाडी, तुसीं मैनूं कॉल करके चैक करो, तुहानूं 90,000 दा ग्रांट सरकार दिंदी है तुहाडी जिहड़ी सोशल लाइफ आ बैलेंस करन वास्ते। 416-910-9000 416-910-9000 ते कॉल करनी है। बोल्टन स्प्रिंग शॉप वाले ने पटे कमाणियां दे विच लीफ स्प्रिंग्स एंड बुशिंग्स विच टॉप दा नाम है 905-857-8222 905-4857-8222 905-857-8222। जे कोई अज दी डेट च होस्ट तुहानूं कहिंदा ना कि तुहाडा प्रधानमंत्री छुट्टियां मनाउण गया, फलाणी थों बैठा, ढमकाणी थों बैठा, उहनूं को बायस्ड होके काम ना करो। तुसीं इह मुल्क दे उत्ते बहुत टाइम क्रूशल चलदा, लोगों का मनोबल स्ट्रोंग चाहिए। मैं तो अज गल की है तुहाडे नाल, मेरी गलबात तुहानूं एनर्जी दे रही सी, बूस्ट कर रही है, कोई डर नहीं फैला रही तुहाडे अंडर। डोनल्ड ट्रंप कोई भूत नहीं हैगा कि दुनिया नूं खाजूगा, एक मुल्क है उत्थों दा प्रेजिडेंट रहना चाहिए। उहदियां असीमित जिहड़ी पावर है ये खराब कर रही है अमरीका नूं भी ते बाकी मुल्कां नूं भी। इहनूं रोकण लई अगर मार्क कारनी मूहरे आया हैगा, G7 मुल्कां दे विच मार्क कारनी ने कहा कि असीं सब तो वध काम कीता, कल दी स्टेटमेंट है, उहने कहा असीं 70,000 जॉब जनरेट कीती आ पिछले महीने कल्ले ओंटारियो च। तो डग फोर्ड ने कहा उत्थे दे टीवी दे उपर CNN दे उपर कि थोड़े घर महंगे क्यों हो गए, क्योंकि जिहड़ी साडी लक्कड़ आ रही है उत्ते 30% टैरिफ लाया है इस आदमी ने, बिल्डर्स ने 30% प्राइज अप चक दिती है, यानी कि 3 लाख का घर है 90,000 प्राइज उपर जा चुकी है क्योंकि साडी लक्कड़ दे उत्ते इस आदमी ने टैक्स ला दिता। थोनू घर क्यों महंगे मिलन इस प्रेजिडेंट के कारण, जदों कि वादा करके आया सी थोनू सस्ते घर मिलणगे। थोनू ग्रोसरी क्यों महंगी मिल रही है, तेल क्यों महंगा मिल रहा है, कि उन्हें ईरान नाल लड़ाई छिड़ी। ये जागरूकता जिहड़ी है ना कितें ना कितें अमरीका नूं हिला के रख देगी अंदर खाते। इस चीज़ का अमेरिका भी भली भां जाणूगा। तो डोनल्ड ट्रंप जदों रेगन दियां ऐड पिछली बार चलाईयां सीगियां डग फोर्ड ने CNN दे उपर, उस वेले हिल चुक्या सी, ते प्राइम मिनिस्टर नूं उहदी कॉल आई सी कि तुसीं ये ऐड्स राइट अवे डग फोर्ड दियां स्टॉप कराओ। MH18 डोर एंड विंडोज़ वाले ने जिहड़े कि डोर ते विंडोज़ नूं रिपेयर करते हैं। अगर थोड़ियां किसी दी वी डोरस एंड विंडोज़ जो कोई नुक्शा खराब होया, शीशा टुट गया, कोई रबड़ टुट गई, या कॉकिंग करवानी चाहते हो विंडोज़ में, उन्हें सील कर देंगे आले दुआले तो जो थोड़े घर के अंदर ठंड घट जाए बढ़नी। सर्दियों तो पहला पहला MH18 डोरस एंड विंडोज़ में तुसी कॉल करनी है 647-551-0004 647-551-0004 के उ कॉल कर सकते हो। तो ये हरमन लॉ ऑफिस 647-366-9955। हरमन जी सिंह गरेवाल कहिंदे विल जरूर बना के रखो, क्योंकि जे थोनू कुछ हो गया थोड़ी प्रॉपर्टी एस्टेट कोल चली जाती है। जरूर समझो सारे जिन्हें भी तुसी मैनूं सुणदे हो, विल होगी वह पता लग जू थोड़े तो बाद किनू मिलनी है। विल कल्ली थोड़ी प्रॉपर्टी नहीं, थोड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी की भी हुंदी है, हर चीज़ की हुंदी है। 647-366-9955। भुपिंदर सिंह किचनर वटलू कैम्ब्रिज दे एरिए टॉप दे रियल्टर ने,
ਅਤੇ ਟੋਪ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਚਨਰ ਵਾਟਲੋ ਕੇਮਬ੍ਰਿਜ ਦੇ।

0: ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਨ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਓ ਤੇ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ 437-264-3175, 4372-64-3175 ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
1: जी, सत श्री अकाल बहन जी, कैसी हैं आप?
0: जी, बहुत अच्छे सर, आप सुनाएं।
1: मुर्गाबी के दो मायने हैं। मुर्गाबी एक पत्ते का नाम भी होता है, जो लोग पुराने जमाने में पंजाब में दिल्ली में कान में तकलीफ हुई तो पत्ता तोड़ के हल्का सा गर्म करके कान में डालते तो तकलीफ चली जाती। एक होता वो लंबा सा पत्ता ग्रीन रंग का, एक चपटा जैसा होता ना सांप के फन की तरह खुला हुआ लंबा, आपने देखा होगा उसको, मुर्गाबी का पत्ता बोलते।
0: अच्छा, ये
1: मुर्गाबी
0: कोई
1: पानी में
0: मतलब
1: रहने
0: प्लांट
1: वाली,
0: है? कोई प्लांट है ये?
1: हाँ, प्लांट को भी बोलते हैं। और पानी की जो चिड़िया होती है ना, पानी की जो डक टाइप की होती है लेकिन बतख नहीं होती, पानी की चिड़िया कहते हैं वो, जो पानी के अक्सर ऊपर जो बना लेती घोंसला बौली के ऊपर ताकि कोई ना आए। तो
0: अच्छा,
1: वो उसका भी नाम मुर्गाबी है, दो महीने है। मेहता भी बोलते हैं, चांद की जब कंप्लीट 14वीं का चांद होता ना उसकी खूबसूरती को मेहता भी बोलते।
0: अच्छा, वेरी गुड।
1: तो जो
0: पूरी
1: जब
0: जानकारी है
1: अल्फाज
0: आपको, देख लो सारा बता दिया आपने।
1: नहीं, तो पढ़ते ज्यादा है ना, किताबें अगर पढ़ेंगे तो ज्ञान वहीं से आता।
0: वेरी गुड।
1: जितनी आप हर जबान की किताब पढ़ता हूँ मैं, जानने के लिए कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। दो ही वजह से होती है, हर चीज याद रखिए, वजह होती है। किसी की कामयाबी ऐसी नहीं होती, मेहनत के साथ साथ पीछे दुआएं होती है। बगैर दुआ के कोई कामयाब नहीं होता, सब गलत बातें हैं। दान पुण्य जो करते ये भी दुआ है।
0: बिल्कुल,
1: ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। शुक्रिया, आपने जो भी पूछा जो इल्म में होता वो आपके नजर कर देते, नजर यानी देख। बाकी का अपना ख्याल रखिए सारों को। मैं तो सत्यकाल जी,
0: जी जी जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखो किन्नी वधिया जानकारी वैसे दित्ती, नहीं पता लग रहा सी है ना ਬੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਸਰਾਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਮਾਂ ਭੱਜੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਸਰਾਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਰਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਲੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਡਬਲ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਸਰਾਸ਼ ਨੂੰ 437-264-3175, 4372-64-3175। ਹਾਂਜੀ ਸਰਾਸ਼,
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਭੀ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਲਾਈਕ ਹਮਾਰਾ ਆਫਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਓਪਨ ਹੀ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪ ਹਮੇ ਕਾਲ ਕਰੇ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਏ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਲਾਈਕ ਆਪ 50,000 ਸੇ 1,70,000 ਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰਤੇ ਹੈ, 0% ਪੇ ਗਾਰੰਟੀ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਖਾਤੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਲਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਤਾ ਆਪ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਤੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਫੁਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੇ ਪਾਸ ਫੇਲ ਕਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ 3 ਘੰਟੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾਨੀ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ, ਔਰ 0% ਪੇ ਲੋਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਮੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਮ।
0: ਸਰਾਸ਼, ਜੈਸੇ ਅਬ ਇਕੋਨਮੀ ਸਲੋ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਉਸਕਾ ਕੁਛ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾ, ਯਾ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਕਾ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੜੇਗਾ?
2: ਦੇਖਿਏ ਜੀ, ਇਸਮੇ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਮੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੇ ਫੰਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਅਭੀ ਰੀਸੈਂਟ ਚੇਂਜ ਆਇਆ 2026 ਮੇ, ਨੈਕਸਟ ਚੇਂਜ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ 2028 ਮੇ। तो अगर सिचुएशन इकोनॉमी की और खराब होगी तो यस, गवर्नमेंट अभी जो लोन डबल कर रखा है उन्होंने, शायद उसको वो हाफ कर दे, लेकिन कब होगा? 2028 अगस्त में, क्योंकि तब एक नेक्स्ट एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है। तो इसलिए बेस्ट यही रहेगा आप अभी एनरोल करें। अगर अभी फैमिली ऑफ 4 है तो आपको $1.5 लाख की फंडिंग आती है 4 किस्तों में। हस्बैंड वाइफ दोनों आसान से कोर्स कर रहे हैं, कोई थप्पा नहीं लगता डॉक्यूमेंट का। हमें कोई बंदा अगर, कोई कमीशन नहीं है, कोई चलाकी नहीं है, कोई मीठबातें नहीं है। अगर हमें कोई छील के इतने पैसे देता है हमें, लाइक कमीशन दे दे के, तो हमें लगता है वो ईमानदारी से काम कर रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छी चीजें हमेशा सस्ते में मिलती है, जो कि अब हवा है, हवा सांस ले रहे, सस्ते मिली ना, फ्री में मिली ना हमें। तो इसलिए आप पीछे ना जाइए, कोई चलाकी नहीं है, फंडिंग हासिल करें 0% पर, कोई भी इसमें हेरा फेरी नहीं है, साफ काम साफ तरीके से कर रहे हैं, असली डॉक्यूमेंट लगते हैं, एडिट नहीं होते डॉक्यूमेंट आपके इसमें।
0: वेरी गुड। अच्छा, जैसे फैमिली ऑफ 4 है उनकी कितनी बन जाती है फंडिंग, थोड़ा बताएं, क्योंकि हमारे पास टाइम बस 1-2 मिनट ही है इसमें। अपना सराश में बता दें, सराश सराश में बताएं।
2: तो अगर फैमिली ऑफ 5 है $1,70,000, फैमिली ऑफ 4 है $1.5 लाख, जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा फंडिंग आपको आपके खाते में आती है। हमारी फीस में सब

0: फ्लैट है $199 वन टाइम फीस है, काम होने के बाद में देनी है तो ईमानदारी आपकी चेक होती है। आसान से कोर्स करें फुली ऑनलाइन, जिसमें सिर्फ अपने अटेंडेंस लगानी है मंडे टू फ्राइडे 3 घंटे, फोन पे या लैपटॉप पे, कोई एज लिमिट नहीं है, हाउस वाइफ है, उबर ड्राइवर है, अनएम्प्लॉयड है, पेंशन पे एलिजिबल है, 0% पे लोन, जिसकी किस्तें 2.5 साल बाद स्टार्ट है, ऐसा कोई लोन सुना जो 2.5 साल बाद किस्त स्टार्ट हो, और 15 साल में पे करते हैं, शुरू में ब्याज कितना 0%, 2.5 साल बाद ब्याज कितना है 2.5% पूरे साल का, मतलब $1,00,000 पे $2,500 ब्याज, वो भी साल का, महीने का भी नहीं। पीछे ना रहिए, बहुत लोगों को असिस्ट कर चुके हैं, प्रॉपर ऑफिस है, 1,000 स्क्वेयर फीट का, रेप्यूटेड लोकेशन पे, 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे, 7 बंदे आपके लिए काम करें। नंबर नोट करें 4372431375, 4372431375, कॉल करो, असेसमेंट कराओ, ऑफिस आओ, 4372431375, 4372643175, नंबर अगेन 4372431375, रीफाइनेंसिंग ना कराओ, स्किल डेवलप करो, फंडिंग 0% हासिल करो बिना चलाकी के नाल।
1: जी बिल्कुल, ते देख लो किन्ना वधिया है, क्रेडिट कोई चेक नहीं थोड़ा होना हैगा, कोर्सेज तुसी वधिया करके अपने आप नू अपग्रेड करो, वधिया जॉब मिलूगी, जिन्नी वार मर्जी तुसी कोर्सेज दे विच इनवॉल्व हो सकदे हो, है ना, कहण दा मतलब तुसी एलिजिबल हो सकदे हो, एक कोर्स थोड़ा खत्म हुंदा तुसी दोबारा करो, थानू फेर फंडिंग जिहड़ी मिल जानी है। सो तुसी नंबर नोट कर लो जी इहनां दा, बड़े वधिया तरीके दे नाल थोड़े नाल गल्लबात करनगे, सारांश दा नंबर, सारांश नंबर बोले एक बार फिर,
0: नंबर है जी 4372431375, 4372643175, स्कोर आपका 0 भी क्रेडिट का एलिजिबल है, क्यों, गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, बैंक नहीं दे रहा, पीछे ना रहिए, 4372431375
1: जी। थैंक यू सराश,
0: थैंक यू
1: बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी सराश नाल तुसी गलबात कर लो, बहुत वधिया जानकारी थानू मिलूगी। कई बार ना आपां सोचदे रहिंदे आ वी आ पता नहीं इदां किवें होऊगा, जे आ हो गया तां इदां, मतलब जे जे करके बहुत सारे क्वेश्चन अपने माइंड दे विच हुंदे आ, पर तुसी जो भी तुहाडे मन दे विच आ रहे आ ना वी आ किवें हो जूगा, जे इदां हो गया असीं किवें वापस करना है, या किन्नी देर दा कोर्स है, ऑनलाइन क्लासेस है कि इन परसन है, जां क्रेडिट चैक बारे, यानी कि बड़े सारे क्वेश्चन हुंदे, क्योंकि तुहाडियां मैनूं बहुत सारियां कॉल्स आउंदियां बाद दे विचों, है ना, या कई बार एज दा हुंदा कि साड़ी एज इन्नी होगी असी एलिजिबल हैगे आ। तुसी कोई भी क्वेश्चन करना नंबर नोट कर लो, यूनी ग्लोबल एडवाइजरी इंक दे सारांश नागपाल दा, 4372431375, 4372643175। ते लो जी मैं थानू नंबर एक बार फिर दे देवां दीपांश दा, पहला सिंगे सारांश हुण हैगे दीपांश, क्योंकि दीपांश ने भेजियां ਮੈਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਭੇਜੀ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਲੀ ਵਿੰਟਰ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਨਵਰੀ ਦੇ 2nd week ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ $965 $965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-way ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਟੋਰੋਂਟੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਟੋਪ ਹੈ 2 ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਿਊ ਸੀਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਹਲੇ, ਇੱਕ ਸਟੋਪ 2 ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ 1-way ਹੈ ਇਹ ਟੋਰੋਂਟੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ, 1045 ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, 2nd week ਦੇ ਵਿੱਚ 1-way ਹੈ, 965 ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਟੋਰੋਂਟੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਸਟੋਪ 2 ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਤਾਂ 1-way ਹੈ ਟੋਰੋਂਟੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਸਟੋਪ 2 ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਟਾਫਟ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ 905-673-1400। ਹਾਂਜੀ ਸਰ
2: जी, सत श्री अकाल, दोनों आपके पास इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे भिजा दिया, फोटो के साथ देख लीजिए।
1: अच्छा जी, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद
2: आपका भी जी, सबको सत श्री अकाल।
1: आज बड़ा स्पेशल दिन है, मोहम्मद साहब का जन्मदिन है आज, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ 59 ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀਪਾਂਸ਼ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਿਕਟਾਂ 1-way ਹੈ ਇਹ, 1 ਟਿਕਟ 965 ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ, ਇਹ 1045 ਦੀ ਆ, ਵਨ ਵੇ ਆ ਟੋਰੋਂਟੋ ਟੂ ਡੈਲੀ, 905-673-1400 ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, 905-673-1400 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਨੀ।
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: यार इना इंश्योरेंस ने धुआं कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
1: टॉप फाइनेंशियल लिंक तो जो अपनिया बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
2: क्रिटिकल मॉर्गेज RESP RRSP विजिटर इंश्योरेंस सुपर वीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे तुहाडे कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता तुहानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
1: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100 647-300-3100
2: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
3: नमस्कार सस्सीकाल मैं आपका खुदा बख्श एंड आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड टू परफॉर्म एट माता जी की चौकी
4: मान तू बताया मेरा दुख सारे काल के
3: ऑन 4th सितंबर एट Eros, the convention center. So this beautiful divine evening organized being by Neha Sethi, Aman and Harman. Aur main ye batana chahta hoon ki ye shaam music aur bhakti se bhari hogi. Hum is din ko Janmashtami celebration kar rahe hain. Aur main aapko ek request karta hoon ki sab ne apne family ke saath, doston ke saath, jitne bhi aapke close hain, sab ke saath aana hai. So guys, see you.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: रोकी, तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. To see cheap flight tickets, si pal de vichon, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sono chahide ne. Jan to see visa services, si pal de vichon, puri family vacation upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna maji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection of Berlin.
5: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157 416-570-0157।

0: स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
2: The wait is finally over. Gordy Kuman of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.
3: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
4: पर टिलो वीडियो ते जदो मर्जी आ जो एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जा tillovideo.com। होर कोई सेवा
5: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा।
6: What's up everybody, this is Jasmine Sandler, ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निजर।

0: Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, या Self-Employed दी File, गल की, Immigration दी हर Problem दा Solution लैन लई, Community दे जाने पहचाने, अते तजरबेकार Immigration Consultant, Gary Virk नू मिलो.
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे Immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना, अते इको ही था. CIC Immigration, हुणे ही कॉल करो, 416-456-6161.
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई.
3: ऐसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सम्राज सिद्धू तो ही करवाई है.
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने. पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381.
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही ले हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो. बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे. हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381.
5: ਲੱਖਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਦ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਐਮੀ ਵੇਅਰ
6: ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਰੂੰ ਆਓ ਜੱਟ ਖੱਬੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਦਾ.
5: ਸਾਊਂਡ ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਮੀ ਵੇਅਰ ਲਾਈਵ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ. August at Great Canadian Casino Resort. Toronto Valio, ready ho jo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
7: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpardeshradio.com ਜਾਂ www.deshpardeshtv.com. ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ TV ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7.

0: jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे
4: S&S Lawyers को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानन ले या सलाह लेन ले आज ही S&S Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000
5: ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ